0: According to sources, six Sena UBT MPs flew into Delhi from Nanded, Pune and Mumbai in private planes early this morning. These MPs were accompanied by a senior Shinde Sena leader. In a bid to manage the crisis, Sena UBT has called a meeting of its MPs. Sena UBT parliamentary party leader Arvind Sawant has issued a whip directing all nine party MPs to attend the meeting on Thursday. Uddhav loyalist Sanjay Raut alleged that their MPs are being lured with cash and threatened with CBI and ED action.
1: जब हमारे पास ED, CBI, पुलिस होगी, तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई घमंड की बात नहीं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं। आप ये सब जो है ना आपकी कवच कुंडले, हाँ, प्रोटेक्शन, ED, CBI का वो निकाल लीजिए और सामने आ जाइए हमारे, हम फिर दिखाते हैं कौन कितना पानी में है, जमीन पे है, हम दिखा देंगे।
0: He even hurled abuses at those suspected of leaving the party while briefing the media. And to make sure that it was not a slip of tongue but a deliberate act, the Uddhav loyalist urged the media to not censor his abuses.
1: No, don't cut. Cut mat karna. Ha, ye log jo hai, beiman log hai. Ye beiman hai aur beimani unke khoon mein hai.
0: Sena UBT MP Arvind Sawant wrote a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla urging him not to recognize any split.
2: खबर जिसने दी उससे जाके पूछो कि भाई खबर दे रहे हो तो कहाँ है वो लोग, वो लोग छह लोग का इकट्ठा फोटो बताओ, माननीय ओम बिरला से मिले होंगे तो उनका फोटो बताओ, बताओ।
0: Sources and speakers office say verification is mandatory in cases of split. They add that it is essential for the speaker to speak with every MP who should substantiate their claims. Sources pointed out that the petitions of TMC MPs were accepted only after they met the speaker personally. If the move of the rebel MP succeeds, it meets the two-thirds requirement under the anti-defection law and boosts NDA members in the Lok Sabha. The opposition has hit out at the BJP, accusing it of breaking rival parties.
3: It's a very serious charge, what Mr. Sanjay Raut is saying. It should be looked into immediately and the speaker must act in an unbiased fashion. And it is true that the current government is trying to create divisions within the opposition parties, breaking parties, and to create a majority when none exists. In the Lok Sabha elections, the BJP got 240 seats, a minority government, a coalition government was formed. It did not get 400 seats. They want to pass bills that require two-third majority. That mandate they don't have.
0: Eknath Shinde let Shiv Sena call the rebellion a result of ill-treatment of MPs within Uddhav's party.
4: Sanjay Raut, jo ye farji aankde logon ke saamne leke aate hain, isko saabit karne ke liye unke paas dam nahi hai, taakat nahi hai. Isko sthapit nahi kar sakte. Isliye us frustration mein Sanjay Raut apne saathiyon ko kabhi gaali dete hain, kabhi unko bikau batate hain, kabhi unki keemat lagate hain. To yah unka apna frustration hai, us frustration par mujhe kuch nahi bolna hai.
0: 3 years after the first split, the Shiv Sena war is playing out again ahead of the Shiv Sena's foundation day on June 19th. With Piyush Mishra and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Mario Shakil spoke to Uddhav's trusted aide amid the Maha political potboiler. Here's an excerpt from the interview.
6: Hello everyone and welcome to this very special conversation. We have the biggest newsmaker amidst this entire crisis playing out in Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction. Someone who understands Uddhav Thackeray very, very closely, has worked very closely with him, perhaps one of the most trusted Lieutenants of Uddhav Thackeray, Sanjay Raut, Member of Parliament, is joining us here. Sanjay Rawatji, thank you for speaking to India Today. Namaskar. Let me begin with what you have said in the press conference that you held just a couple of hours ago. Resign and go. Who are you telling this? Kaun, kisko aap bol rahe hai ki resign karke chale jao?
1: Dekhe, Trinamool Congress ke bhi ho sakte hai. जिस तरह से 20-22 सांसद उनके ममता बनर्जी के नाम पर, उनके पार्टी के आइडियोलॉजी पर चुनकर आए और एक बार चुनाव हार गए तो भाग गए, आपको भागना है तो भाग जाइए, लेकिन जिस पार्टी ने, जिस होटल ने आपको चुन कर दिया है, आप उनके साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हो? आप इस्तीफा दीजिए और जहां जाना है वहां से चुनाव लड़िए। वैसे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी में, आप कोई भी किसी को कहां से भी किडनैप कर लेता है। डेमोक्रेसी में ये किडनैपिंग है।
6: लेकिन बहुत सारे सांसद तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं।
1: नहीं, कोई नहीं मर्जी से जाता है, मर्जी से कोई जाता नहीं। मर्जी से चुनाव हमारे पार्टी में आप लड़ते हो ना, चुनाव आप अपने मर्जी से हमारे पास आकर, हमारा उम्मीदवार बनकर, हमसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हो, अपने पैसा खर्च कर रहे हो, पार्टी दे रही है आपको पैसा, दे रही है उम्मीदवारी, चुनाव का नॉमिनेशन दे रही है, पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पार्टी के नेता चाहे हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, हाँ 25-25 दिन बाहर रहते हैं हम लोग, और बाद में आप हमारी मर्जी से जा रहे हो। कौन सी मर्जी? डेमोक्रेसी में मर्जी है आपकी। अगर आपके आप अपने मर्जी के मालिक है तो पार्टी ने आपको जो पद दिया है, चाहे विधायक हो या एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, आप इस्तीफा दीजिए, आपकी मर्जी।
6: लेकिन अभी खबर आ रही है संजय रावत जी कि लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने, करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल हैं, उसमें 2/3 उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं।
1: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए। आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और बोलेंगे 6 है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
6: बोल रहे हैं, वो फॉल्ट सिग्नेचर्स है।
1: देखिए, हमारे एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूं, यहां चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है,
6: उन्होंने आशंका जताई थी।
1: हाँ, हमको बताया। और दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
6: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
1: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे, हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है, कल 11 बजे, कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे हम।
6: तो रियल टेस्ट
1: कल है,
6: कल है,
1: यस।
6: अभी तक लोकसभा स्पीकर ने जब आपने मुलाकात की, आप गए थे, आपके साथ अरविंद सावंत गए थे, आप लोग सब मिल करके गए थे अभी लोकसभा स्पीकर के पास, तो उनको आपने क्या कहा?
1: हमने जाकर स्पीकर साहब से कहा कि हम बोल नहीं सकते सच है या झूठा, लेकिन खबर चल रही है कि हमारे पार्टी से, पार्लियामेंट्री पार्टी से कुछ लोग टूटकर एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और आपके पास आने वाले हैं, तो ये हमने सुना है,
6: ये बोला आपने?
1: हाँ, ये हमने सुना है, हमारे पास अब तक कोई ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको इन्फॉर्म करें, अगर ऐसी कोई ग्रुप आता है हमारे अप्रोक्स, तो हमारा ये लेटर आप लीजिए, हमने उसमें सब कानूनन जो प्रावधान है उसमें दिए हैं, और सबसे पहले आप हमें बताइए, हम पार्टी है ओरिजिनल, और हम इतना ही आपसे चाहते हैं कि जो नियम कानून और संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, बस आप उसका पालन कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, बस इतना ही कहा।
6: संजय राव जी, आपने एक ट्वीट किया था रात में,
1: हाँ,
6: अपना सपना मनी मनी है ना, और ये भी कहा था कि 15 करोड़ ऑफर किया जा रहा है स्विच करने के लिए,
1: दे दिया पैसा
6: नहीं, लेकिन सवाल है कि आपके सांसद ले रहे हैं, कौन ले रहा है?
1: मैंने कहा, बोला कि मेरे सांसद ले रहे हैं, हमारे सांसद ले रहे।
6: आपने कहा ऑफर किया जा रहा है,
1: आप पूरे ट्वीट पढ़िए, मैंने महाराष्ट्र के सांसद के बारे में कहा है,
6: महाराष्ट्र के
1: महाराष्ट्र के कुछ एमपीज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज रात को उन्हें 15-15 करोड़ रुपया उनके घर में
6: आज दिया जाएगा, बोल
1: कल रात को।
6: अच्छा,
1: जब तक ये पैसा नहीं मिलता है तब तक कोई चार्टर फ्लाइट में नहीं बैठेगा। सबके चुनाव क्षेत्र में चार्टर फ्लाइट खड़े थे कल।
6: बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप।
1: और मैंने चार्टर्ड फ्लाइट का फोटो भी आज दिया।

0: 50-60 करोड़ का डील है और उसका 15 करोड़ जब उनके हाथ में मिल गया तब वो फ्लाइट में बैठ गए और आ गए.
1: बट आंट यू कंसर्न्ड सर दैट इफ दीज आर योर एमपीज, योर यूबीटी सेना फैक्शन एमपीज, देन यू हैव नॉट मैनेज्ड टू कीप योर हाउस इन ऑर्डर. आपका अपना घर सही नहीं है,
0: जब
1: उसमें लोग नहीं है.
0: जब हमारे पास ईडी सीबीआई पुलिस होगी तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा. मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई घमंड की बात नहीं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं. आप ये सब जो है ना आपकी कवच कुंडले हाँ प्रोटेक्शन ईडी सीबीआई का वो निकाल दीजिए और सामने आ जाइए हमारे, हम फिर दिखाते हैं कौन कितना पानी में है जमीन पे है, हम दिखा देंगे. ये तो कोई भी कर सकता है इस प्रकार से. अगर मेरे पास इस प्रकार की एजेंसी हो और मैं किसी के ऊपर दबाव डाल सकता हूं. लोग डरते हैं, सब लोग हमारे जैसे नहीं होते, जो होगा वो देखा जाएगा. लोग डरते हैं बेचारे. अब आपको बताता हूं हमारे एक एमपी है जिनका नाम है ओम राजे निंबाळकर. हम उनको ऐसा बच्चा था, उनको पहले एमएलए बनाया उद्धव जी ने, पार्टी ने 2 बार का 3 बार का एमपी बनाया. अभी मैं क्या बोल रहा हूं, उसके पिताजी का 20 साल पहले मर्डर हो गया उसके पिताजी का पवन ओम राजे निंबाळकर का, भर सड़क पर उसकी गोली मारी और उसमें नाम आया उस वक्त के जो गृह मंत्री पदम सिंह पाटिल जी का, बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है वो. ये उनके अंकल है, भाई उनके भाई थे. 20 साल तक ये कानूनी लड़ाई चलती रही और ये लड़का हमारे पार्टी में आया, हमारे पार्टी से एमएलए बन गया. कौन उसको बनाता है एमएलए, कौन उसको बनाता है एमपी 3 बार. अब कल उनका फैसला था, 20 साल के बाद कल वो डेट बोर्ड पर आ गई हाईकोर्ट के. अब फैसला है आज और ये पवन राजे को मैसेज दिया गया एक पार्टी के प्रमुख नेता के तरफ से, अगर फैसला तुम्हारे हक में चाहिए तो हमारे पार्टी में आ जाओ, तुमको फैसला मिल जाएगा. और कल वो डेट आगे चली गई.
1: ये पूरा बिल्डअप ये कहा जा रहा है दैट इज इट इज लिंक्ड टू योर फाउंडेशन डे व्हिच इज ऑन 19.
0: तो दबाव किस प्रकार से होता है, ये दबाव का ये भी ऐसे कारण है. तुम्हें हाईकोर्ट का फैसला तुम्हारे मर्जी के मुताबिक मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, आपके बाप का मर्डर का बारे में जो फैसला है.
1: यू आर सेइंग दैट इवन जुडिशरी इज इन्वॉल्व्ड हियर.
0: जुडिशरी कहां इन्वॉल्व नहीं है, 4 साल से हम लोग तारीख पे तारीख ले रहे हमारे केस में. हाँ 10th शेड्यूल के बारे में हम दीवार पर हमारा सर फोड़ रहे हैं 10th शेड्यूल के बारे में. सुनवाई होती है क्या, 5 चीफ जस्टिस बदल गए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है.
1: 19th इज योर फाउंडेशन डे, 60 साल होगा पार्टी को, उस दिन शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा.
0: होने दो,
1: आपकी पार्टी के अभी 20 एमएलए हैं असेंबली में, 1 आप राज्यसभा में, 9 लोकसभा में, लेकिन वो भी है कि संभावना है कि वो कुछ और एक फैक्शन बन सकता है जो चर्चा चल रही है. ये लेगेसी की भी लड़ाई है सर.
0: लेगेसी की लड़ाई शिंदे के पास जाएगी क्या, उद्धव ठाकरे को जन्म दिया बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी को. बालासाहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को उस वक्त पार्टी का चीफ बनाया तो हम भी फॉलो करेंगे, पार्टी तो ऐसे ही चलेगी हमारी. इतना शिंदे फैक्शन किया, ये तो अमित शाह साहब की पार्टी है, अजित पवार की पार्टी, अमित शाह साहब की पार्टी है. अमित शाह जी ने पार्टी बनाई, मोदी जी ने ये 2 पार्टी बनाई महाराष्ट्र में.
1: लेकिन जनता ने उनको फिर से जिताया है, मैंडेट दिया है.
0: हम उसको मैंडेट नहीं मानते भाई, मैंडेट ये नहीं होता है ना. इस तरह से आप लोकसभा में मैंडेट दिया हमको और 3 महीने में मैंडेट दिया ये लोगों को, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया 3 महीने में. जो बात पश्चिम बंगाल में हो गई वही बात महाराष्ट्र में हो गई.
1: तो यही मेरा सवाल,
0: आप पूरा चुनाव हैजैक कर लेते हो और चुनाव जीत लेते हो.
1: ये मेरा सवाल होगा कि अब इंडिया ब्लॉक का क्या होगा. आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने देखा, तृणमूल कांग्रेस का एक सिग्निफिकेंट चंक 2/3 जाके एनसीपीआई से मर्ज कर जाता है. असेंबली में भी वो टूट करके एलओपी बन जाता, एलओपी का दर्जा ले लेते हैं. आप लोगों के साथ भी अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर।

0: करते रहेंगे, देखो ये लोग करते रहेंगे, जब तक ये करते रहेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे में आज भी अगर आप में हमारी पार्टी तोड़ने की क्षमता आप रखते हैं एजेंसी का मिसयूज करके, तो हमारे जैसे लोग भी आज भी इस छल कपट से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लड़ेंगे।
1: इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर है?
0: इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर अच्छा है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में। बात ऐसी है कि देखो कोई पार्टी तोड़ने से पार्टी खत्म नहीं होती ना। हमारी पार्टी है वो थोड़ी एमपी एमएलए बनाने के लिए बनी है। लोग आते हैं लोग चले जाते हैं ना। 60 साल में पार्टी टूटी है। नारायण राणे चले गए, एकनाथ शिंदे चले गए, छगन भुजबल चले गए, राज ठाकरे चले गए। पार्टी है, पार्टी रहेगी, कभी कम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, और नए लोग चुनकर लाएंगे हम।
1: आपका कहना है कि जो 6 नाम चल रहे हैं कि इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर को अपना नाम सिग्नेचर के तौर पर दे दिया है कि वो उन लोगों को सेपरेट फैक्शन के तौर पर देखा जाए, उसमें से 2 सांसद जिनका नाम आपने लिया वो आपके साथ अभी भी संपर्क में है?
0: डेफिनेटली। बात ऐसे कि अभी हम जब ओम बिरला साहब से मिले तो मुझे नहीं लगता है कि अब तक किसी ने उनके पास इस प्रकार का लेटर दिया है।
1: दैट्स द सेंस दैट यू गॉट?
0: ऐसा मुझे लगता है, उनसे जब मैंने बात की तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारे लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं उनके पास कोई जाकर इस प्रकार का क्लेम करके आए हैं कि हम अलग गुट मनाने जा रहे हैं। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है। जब मैं बिरला साहब को जानता हूं बहुत नज़दीक से और वो खुलकर बात करने वाला आदमी है, हमने बहुत सी बातें बिरला साहब से की, लेकिन मुझे उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई हमारी, मुझे ये महसूस नहीं हो गया कि उनके पास जाकर किसी ने ये क्लेम किया है अब तक, अभी तक।
1: ओके, एंड यू आर सेइंग दैट द रियल टेस्ट विल बी टुमारो, क्योंकि आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है।
0: या,
1: एंड दैट विल बी हैपनिंग
0: डेफिनेटली। कल हम 11 बजे सबका इंतजार करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, सबके लिए खाना पीना सब रखा है, इंतजाम है पूरा, आप आइए खाओ आप।
1: और उसी वक्त पता चलेगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन में कौन है।
0: आपने कल तक हमारा नमक खाया है, कल 11 बजे भी खाइए।
1: चलिए, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे सर।
0: थैंक यू।
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
3: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.

0: Our leader Eknathji Shinde's popularity is known to all. Every single day there is a Paksh Pravesh, whether it's somebody from Amravati, from Nanded, Sholapur, Kolhapur, Parbhani, Latur, the list is endless. And this is because of the good governance model. So I think rather than using words like Operation Tiger and speculating, do understand the only operation he conducts is that for the development and progress of the state of Maharashtra. I think we shouldn't speculate and just wait, because if people on their own accord choose to join the Shiv Sena, as we have been...
1: Ubatha naam ki party ab dheere dheere khatm ho rahi. Ubatha ke netitv par, Ubatha ke jo MLAs hain, jo MPs hain, ab unka vishwas nahi raha. To 2029 aate aate ye party puri tarah se khatm ho jayegi. Kyon? Kyunki roj Ubatha chhod karke उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की।

0: राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को मैनेज करने वालों में जो सबसे बड़े ओहदेदार थे उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को इकट्ठा करने, चढ़ाई गई नोटों की गड्डी बनाने और फिर जमा करने में तक बहुत अहम था, वो था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम।
1: The controversy, as expected, has invited strong political reactions from the opposition, who are questioning BJP's bhakti. Needless to say, the temple stands as a symbol of faith. The donations, a reflection of devotion. But when questions arise over the handling of that money, transparency becomes as important as the belief itself. With Santosh Mishra and Samarth Srivastav, Bureau Report, India Today.

देखिए, विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के समय प्रमुख व्यक्तियों में से थे और उनका उनको अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद प्राप्त था। छोटी सी भूमिका हमारी भी रही है। सीबीआई ने सबसे पहले मुझे अरेस्ट किया, कारसेवकों पर गोली चलने के पहले 2 महीने पहले मुझे मुलायम सिंह जी की सरकार ने अरेस्ट किया। और अगर आज वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर आंदोलन से जुड़े थे उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ये 100% सही है।

0: बंगाल चुनाव के बाद आपने देखा कि 20 सांसद टीएमसी से टूट गए। अब वहां उद्धव ठाकरे चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहां से सात को जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया, उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम हो, आई जो तो रात के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो, योगी जी के इनकी जान बचौली रहा मंचवा पर।
1: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप?
0: अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के अब जाएंगे।
2: A government school in Telangana's Nalgonda district, which had few takers till a year ago, is suddenly in much demand. The Komati Reddy Pratik Government School in Bottugura has received nearly 4,000 applications for just 450 seats.
3: This one, rectangle. And this one also, rectangle.
2: Till last year, the school functioned without a permanent building. Today, it is a three-story building and is equipped with smart classrooms and digital laboratories.
4: पहले हमारे बच्चे private school में थे सर, फिर वहाँ fees, books, सब बहुत ज़्यादा हो जाता था सर। School बना है सर, ये बहुत अच्छा बना है school। यहाँ computer education है, फिर ऐसी campus है, private school के बराबर ये school बना है। इस level के ये साल में ये स्कूल में एडमिशन करे।
5: प्रीवियस स्कूल विशिष्ट स्कूल इन दैट इन दिस प्राइवेट स्कूल दैट वन सो मेनी फीस आर एक्सपेक्टेड इन दैट स्कूल वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सो लाइफ स्किल्स एंड एटीट्यूड एवरी गवर्नमेंट स्कूल एक्सेप्ट डिसिप्लिन आल्सो सो दैट इज द मेन रीजन फॉर दिस
2: द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल हैज स्पार्क्ड अ रश फॉर सीट्स
6: लास्ट ईयर वी हैव द 110 स्टूडेंट्स Out of 110 students, 33 students go on 10th class, 85 are there last, and now 270 students are admitted here. For that, the competition is 1:10. We have the less teachers are there, and repeating 7 teachers repeating here. It is not a government school, it is like a corporate school we are same maintaining there.
2: The new school was built using funds from the Komati Reddy Pratik Foundation, an NGO set up by State Minister Komati Reddy Venkat Reddy in memory of his son Pratik. With Abdul Bashir, Bureau Report, India Today.

0: Our leader Eknathji Shinde's popularity is known to all. Every single day there is a Paksh Pravesh, whether it's somebody from Amravati, from Nanded, Sholapur, Kolhapur, Parbhani, Latur, the list is endless. And this is because of the good governance model. So I think rather than using words like Operation Tiger and speculating, do understand the only operation he conducts is that for the development and progress of the state of Maharashtra. I think we shouldn't speculate and just wait, because if people on their own accord choose to join the Shiv Sena, as we have been...
1: Ubatha naam ki party ab dheere dheere khatm ho rahi hai. Ubatha ke netitv par, Ubatha ke jo MLAs hain, jo MPs hain, ab unka vishwas nahi raha. To 2029 aate aate ye party puri tarah se khatm ho jayegi. Kyon? Kyunki roj Ubatha chhod karke उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं।

0: Hot Mics with Billy Bush, streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: गिदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस, ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है।
2: और यहाँ पे ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन लायन चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, लोटस चल रहा है, ये क्या चल रहा है देश के अंदर? तो पूरा देश देख रहा है ना कि आप किस तरह से लोगों के वोट ले लेते हो, उसके बाद में सबके सब जाके सीधा बीजेपी की झोली में डालते हो, साथ में बैठ के आराम से खाना खा रहे, चाय पी रहे, यही हमको कल तक गालियां बकने वाले। आज पूरा देश देख रहा है कि कौन असल बीटी में, कौन धोखेबाज है, कौन गद्दार है। पूरे देश के सामने आज ओपन हो गया किस तरह से लोग जा रहे, जाते ही जा रहे, आओ बीजेपी तो बन गया एकदम, आ जाओ, आ जा भाई, आ जा, सब जाते जा रहे। और यहाँ पे वोट ले लिए सेक्युलरिज्म के नाम पे, हमको गालियां बक बक के सब चले गए बीजेपी के अंदर जाके बैठ गए। असल बी टीम, असल गद्दार धोखेबाज कौन है, पूरे देश ने देख लिया।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: टाइगर का हुक्म।
1: But the casting buzz isn't the only reason fans are excited. If the reports are true, Jailer 2 will reunite Hrithik and Rajnikanth nearly four decades after Bhagwan Dada in 1986, where Hrithik appeared as a child actor alongside the superstar.
2: No, kela khao.
3: Govinda, tujhe zara sa bhi kuch ho jata hai, to main ghabra jata hu.
2: तुम जिसके नाम से सब घबराते हैं। बापू, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा।
3: दादा सब ठीक है ना? ये है स्वरूप चाचा, नमस्ते करो।
1: टुडे ही रिटर्न्स एज वन ऑफ इंडियन सिनेमास बिगेस्ट स्टार्स, मेकिंग इट अ रेयर फुल सर्कल मोमेंट।

देखिए, विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के समय प्रमुख व्यक्तियों में से थे और उनका उनको अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद प्राप्त था। छोटी सी भूमिका हमारी भी रही है। सीबीआई ने सबसे पहले मुझे अरेस्ट किया, कारसेवकों पर गोली चलने के पहले 2 महीने पहले मुझे मुलायम सिंह जी की सरकार ने अरेस्ट किया। और अगर आज वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर आंदोलन से जुड़े थे उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ये 100% सही है।

0: उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
0: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
2: प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है, डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है, और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। तो भाजपा को दो

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: And well, the latest on Operation Tiger, where Uddhav Sena is split. And sources say that six Uddhav MPs are set to break away. Sources also saying that Parbhani MP Sanjay Jadhav will lead the faction. A news conference underway right now, led by Sanjay Rao. Let's cut across.
2: सात दिन के अंदर जवाब नहीं आया उसके आगे क्या कार्रवाई सर अनुपस्थिति को छोड़कर सर दिन के बाद स्पीकर को उनके डिस्क्वालिफिकेशन सर इसके अलावा किसी बात पर चर्चा हुई सवाल दोनों भी बार बार कल से कह रहे हैं
3: अगर चिट्ठी लिखी है तो निर्गत बताओ तो सही है भैया चिट्ठी अगर आप मुझे समझ आता आप जानकारी हमसे लेते हो जो और आपकी उनकी सही बात कर बात करते हो उनसे एक बार पूछो तो सही भाई तुम्हारी चिट्ठी कहाँ है बताओ
2: वो तो
3: एक हमारी जो है ना तो हमने जो नोटिस दी
4: हमने
3: जो
4: चिट्ठी लिखी सार्वजनिक की है
3: सभी सार्वजनिक कर दिया ना तो उनका क्यों नहीं करते तो चोरी छुपके करने वाले लोग उनको पता है क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं
4: संजय जीना पाटिल मुंबई में है ठीक है पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं आप जो नहीं आए हैं वो कहाँ है उनका आता पता क्या है क्या शिंदे के लोगों ने गुंडे लोग आया क्या किडनैप किया है उनके पास सरकार किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है हाँ क्या उनका जिंदगी का जीवन को कोई खतरा है उनके अब देखना पड़ेगा ना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं
5: सर उधर
6: लेकिन वो दोनों लोग आपके साथ हैं सर ये आप इस बात को लेकर आप श्योर हैं कि वो उनके साथ
4: नहीं हुआ है लेकिन हमारी पूरी जानकारी है कि ये लोग दिल्ली में नहीं है
7: सर उधर जी ने क्या बोला आपको जो आपने फोन किया था
4: उद्धव जी भी पूरा क्या चल रहा है यहाँ मीटिंग में क्या चल रहा है बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है चार पांच एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा
6: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे
4: देखेंगे कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं
5: सर जिस दिन
4: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग
5: सर अभी संडे को सब आपने कहा सारे एमपीज थे
1: And let me now cut across to my colleague Jitendra Bahadur joining us on the broadcast. Jitendra, एक बात साफ है जो संजय राउत ने बोली है कि शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा सभी एब्सेंटी एमपीज को और सात दिन का समय उन्हें दिया गया है कि उन्हें रिस्पॉन्ड करना है
8: बिल्कुल आज जो बैठक थी ये पार्लियामेंट के अंदर ही थी जो यहाँ पर शिवसेना यूटीवी का ऑफिस के यहाँ पर बैठक थी और सभी जो लोकसभा के सांसद हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था लेकिन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ तीन ही सांसद इस बैठक में पहुंचे बाकी के छह सांसद नौ में से जो छह सांसद हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंचे जिस तरीके से संजय राउत ने बोला कि लगातार जो है सांसदों को प्रलोभन दिया गया और उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो शिवसेना यूटीवी है उसकी तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कारण बताओ नोटिस के बाद अगर उसका जवाब वो लोग सही तरीके से नहीं देते हैं बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है मोबाइल से भी संपर्क करने की कोशिश उन सांसदों से की गई जो कि बागी सांसद हैं लेकिन उन्होंने उस फोन को पिक नहीं किया यानी मोबाइल फोन से किसी भी तरीके का संपर्क नहीं हो पाया तो अब शिवसेना यूटीवी जो है वो आगे कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद जो जवाब आएगा उसके हिसाब से उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी इस तरीके की जानकारी मिल रही है और उसके लिए आगे कदम बढ़ाया जाएगा जी
1: जी जितेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. And with that, we now toss it to our team leading So South, where you get to watch all that is making headlines down south.

0: प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है। डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है। और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है, एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है।
1: ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस, ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संविधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। और
2: यहाँ पे ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन लायन चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, लोटस चल रहा है, ये क्या चल रहा है देश के अंदर? तो पूरा देश देख रहा है ना कि आप किस तरह से लोगों के वोट ले लेते हो, उसके बाद में सब के सब जाके सीधा बीजेपी की झोली में डाल देते, साथ में बैठ के आराम से खाना खा रहे, चाय पी रहे, यही हमको कल तक गालियां बकने वाले। आज पूरा देश देख रहा है कि कौन असल बीटी में, कौन धोखेबाज है, कौन गद्दार है। पूरे देश के सामने आज ओपन हो गया किस तरह से लोग जा रहे, जाते ही जा रहे, आओ बीजेपी तो बन गया एकदम, आ जाओ आ जा भाई आ जा, सब जाते जा रहे। और यहाँ पे वोट ले लिए सेक्युलरिज्म के नाम पे, हमको गालियां बक बक के सब चले गए बीजेपी के अंदर जाके बैठ गए। असल बी टीम, असल गद्दार धोखेबाज कौन है, पूरे देश ने देख लिया।
3: A very, very crucial hearing to watch in the Delhi High Court as the center is going to attempt to defend the complete ban on the Telegram app. Remember, the center during the hearing on Wednesday afternoon had argued through the Solicitor General that they had flagged multiple channels on Telegram where questions and the paper leak were being discussed, where the questions were being shared. In fact, the center has alleged that they had flagged those channels, but Telegram did not take action in time, and that is why they imposed the ban. On the other side, Telegram has raised three important legal points. One, that whenever the channel was flagged by the NTA or by the government, that channel was immediately blocked. Second, that you cannot hold the platform guilty for the actions of a few persons who are users, especially when there are 150 million people using it, including businesses, including educational platforms. Third, and most importantly, the Telegram app has argued that the center's order, the secretary's order, was without any reason, that whatever material that the Solicitor General is talking about was never actually pointed out to the Telegram app. And that is why all procedures, due process that is required by the law was never followed. Interestingly, the High Court bench of Justice Tejas Karia also questioned, how can you punish an app for the action of a few? Because any platform can be misused by people with bad intentions. So with all of this, with a lot of questions being asked about how exactly are so many users being penalized for the actions of some people who may have leaked something on the Telegram app, today's hearing is going to be very, very crucial to watch, both for the NEET paper leak investigation and for internet freedom in the country.
0: प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है। डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है। और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है, एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
3: Oh yeah.
2: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
7: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
8: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
9: दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है. डीएमके की चुनाव में हार हुई. डीएमके की चुनाव में हार हुई. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं. आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है. और बीजेपी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है. तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है. एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से ख़त्म करना है. जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है. प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है. डीएमके की चुनाव में हार हुई. डीएमके की चुनाव में हार हुई. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं. आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है. और बीजेपी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है. तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है. एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से ख़त्म करना है. जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है.

0: उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
0: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
2: प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है, डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है, और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है, एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है।
3: देखिए, विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के समय प्रमुख व्यक्तियों में से थे, और उनका उनको अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद प्राप्त था। छोटी सी भूमिका हमारी भी रही है, सीबीआई ने सबसे पहले मुझे अरेस्ट किया, कार सेवकों पर गोली चलने के पहले 2 महीने पहले मुझे मुलायम सिंह जी की सरकार ने अरेस्ट किया। और अगर आज वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर आंदोलन से जुड़े थे उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ये 100% सही है।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
3: somebody save me,
2: to timeless favorites,
3: life is like a song,
2: and new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: You know, this is a media report coming in from Axios that says that Trump may have sold himself short. The U.S. may have agreed to certain terms, which really shows up to be the fact that U.S. is on the lesser side if we speak of who's won what at the end of the day, the spoils of the war, as we call it. If you are to take a look at it, the oil sanctions being waived or to be waived, the frozen assets that are to be made accessible, there's a reconstruction fund that's been demanded. If all goes well with their nuclear program enrichment, the discussion goes well on that front and is implemented, do you think Iran actually came out to probably be the bigger winner here with the kind of economic problems they were already facing domestically? This might actually be a solution to that.
5: It's a good question, and I think it's a criticism that some here are, giving the president at this moment and criticizing the president of for what they say is a deal that gives Iran some wins here, for the president continuing to say that the U.S. had all the cards and continued, was winning. There are criticisms from those on Capitol Hill that I've been talking with that he could have kept going. He could have kept striking until he got everything he wanted. But now there are some kind of concessions being made here. Though the White House continues to frame this as if the Iranians behave, this is performance-based. They will only get this money if they continue to kind of agree and continue to play and work with the Americans and the U.S. here. But that might be something that the Iran side isn't completely in lockstep with or how they might view it. So there is definitely talk of that here in Washington, that the president might have given up more than he should have. But at least for the president and this White House, they are praising this deal. We just saw a post from his chief of staff, Susie Wiles, saying that he was celebrating it at the G7. The G7 was a success, as was this deal, that it will be better for the world. And even the president saying today that he was concerned about the oil prices, that they were running out of oil reserves, and that this was avoiding a catastrophe of what he says could have been an economic catastrophe.
6: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सुपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो 2-4-5 दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
7: राज भाजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
8: From Parliament Hill to the pop culture spotlight, this romance has become the internet's most unexpected obsession. One led a nation, the other conquered the global music charts. And now Katy Perry and Justin Trudeau are leading the headlines. The pop superstar and the former Canadian Prime Minister have once again set tongues wagging after being spotted enjoying a cozy picnic date in Santa Barbara, with videos and pictures of the two quickly going.
9: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
10: There's a stranger remark that has come in from the Muslim Law Board cleric. The AIMPLB cleric says, I quote him here first, Hindus no longer in majority. So that's the latest statement that has come in. This is Nomani saying, and I want to first quote him here. Dalits, tribals, Tamils, Lingayats are not Hindus. And therefore, underestimating and the kind of understanding we have of the Hindu population is misleading. Now, why would a Muslim Personal Law Board member want to make such a statement at one of the conclaves here? We split Hindus into secular and fascist categories. Both type of Hindus hurt our cause. Some Jats say they are not Hindus. So basically what you're saying, and remember that whether it's Dalits, whether it's the people from Tamil Nadu or other groups as well, including Lingayat, it's the broader sense that is seen as Sanatan Dharm as Hindus. But here's what Nomani has said. Let's listen in.
11: कि भारत में हिंदू अकलियत में है, किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूं, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं है। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं।
10: आना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी इज अ प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर, सो वी आर नॉट कोटिंग समवन हु इज पॉसिबली टू जूनियर, टू नाइव, हु वुडंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग। आई वांट टू गेट दिस अक्रॉस टू माय कॉलीग अरविंद ओझा फॉर द लेटेस्ट ऑन दैट। अरविंद, पहली बात तो मैं समझना चाह रही हूँ कि ये इस्लामिक स्कॉलर की तरफ से क्यों आ रहा है ऐसे कॉन्क्लेव पे, क्या उनको ज़रूरत रही होगी ये बोलने की। बट उससे ज़्यादा जो हैरान हूँ मैं, उन्होंने जो कहा कि हिंदूज को हम सेक्युलर और फैशिस्ट कैटेगरीज के हिसाब से देखते हैं, बोथ टाइप ऑफ हिंदूज हर्ट आवर कॉज।
12: बिल्कुल, देखिए, और ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा बयान है मौलाना का, वो विवादित बयान इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलर है, काफी फेमस है सज्जाद नोमानी, लेकिन जिस तरह का बयान दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो भारत है उसमें हिंदू वो बहुसंख्यक नहीं है। तो ये उनका कहना अपने आप में, और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन सिख हिंदू नहीं है। तो उसके अलावा इस तरह के कई रिमार्क्स उन्होंने दिए जो काफी कंट्रोवर्सियल है, जिस पर बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद और रिएक्शन है, लेकिन ये एक प्रोग्राम के दौरान इस तरह की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी लंबा इसके लिए रिसर्च किया और रिसर्च करने के लिए ये बात कही। जो आप है जो हिंदू संगठन से, उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो हिंदू बहुसंख्यक है उनको बांटने की कोशिश, उसके तहत ये बयान दिया गया हो। तो काफी ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क है जो सज्जाद नोमानी है, जाने माने स्कॉलर है, उनकी तरफ से जब ये विवादित बयान आता है तो वो सोचने वाली बात होती है।
10: अरविंद, हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज आई वॉन्ट द व्यूअर टू जस्ट लिसन टू इट अगेन। ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू, आई एम श्योर, बिकम अ ह्यूज डिबेट, द काइंड ही इज मेंशनिंग ऑफ व्हाट डिफाइंस अ हिंदू।
11: कि भारत में हिंदू अकलियत में है, किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं।
10: All right, so eventually it will be. I leave it to the Hindus to then decide and discuss of whether they feel a part of the community or not. Let's go across to our Business Today colleague, Sakshi Batra, for all the business news that's coming in from the market. Sakshi, over to you.
13: Look, this investment guru tips will double your money. Just claim the offer.
14: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
9: Presented by National Stock Exchange.

0: with reports suggesting the former Prime Minister skipped Canada's opening match to cheer for her performance.
1: ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था उसमें ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ, इस वजह से नाराज हैं और आप इस वजह से जा सकते हैं। क्या टूटने की स्थिति आपको सपा में दिखाई पड़ रही है?
2: देखिए, अब हमको सब अब तक हमको सपा में कोई टूटने की स्थिति दिखाई दे रही है। ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। अब किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ ही नहीं था, और न हम लोगों की स्तर पर कोई बुलाया था, और न कोई पूछने का काम किया था, और न यह कहने का काम किया था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप अपने क्षेत्र में मजबूत होंगे, आपका सर्वे कराया जाएगा, आप अगर जिताऊ होंगे, आपके जो है ग्रेविटी को देखा जाएगा, टिका हो गए तो आपको टिकट भी देने का काम किया जाएगा। तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया?
3: कौन कौन मिल चुका है अच्छा अभी तक? कौन कौन सांसद
4: है कि 10-12 लोग तो नाम का जिक्र हो चुका, अब वो सब आ चुके हैं मिल करके अपने तैयारी में लगे हुए।
3: हाँ, दिल्ली मिले
4: कुछ लोग।

0: लखनऊ मिले हैं, कुछ लोग दिल्ली मिले हैं।
1: मुख्यमंत्री से
0: आप देखिए मुलाकात तो बहुत लोगों से हुई है अब, लेकिन जिक्र है, अब हम क्यों बताएंगे कि वो खुद बताएंगे।
1: 10 का आंकड़ा मोटा मोटा देते हैं तो 37 सांसद हुए, तो 27
0: वो तो हमारे संज्ञान में 10 ठो हैं। अच्छा, उनके संज्ञान में 12-15 ठो होंगे भाई, जो इधर से गए।
1: जितने सांसदों की टूट आपके हिसाब से हो रही है मोटा मोटा, जो आपके सूत्र बताए,
0: 22-23 ठो हैं।
1: 22-23 की टूट हो रही है,
0: 22-23 हैं जो वहां दिल्ली में इन लोगों की बातचीत हो चुकी है, सब चीज लाइन अप है। हमको लगता है कि महाराष्ट्र और बंगाल के बाद नंबर तीसरे पे यही है।

0: with reports suggesting the former Prime Minister skipped Canada's opening match to cheer for her performance.
1: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पांच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
2: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कल सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
3: बंगाल चुनाव के बाद आपने देखा कि 20 सांसद टीएमसी से टूट गए। अब वहाँ उद्धव ठाकरे चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहाँ से 7 को जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया, उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम हो, आई जो तो राति के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो, योगी जी के इनकी जान बचाव ले रहा मंचवा पर।
4: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप?
3: अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे।

0: उन सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सुपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था। और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
1: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
3: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कि सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
4: तो आपने देखी हमारी ओमेगा 3 की रील, आप पहुंच गए एक केमिस्ट और कहा कि भाई हमें भी ओमेगा 3 दे दीजिए। पर फिर शुरू हुआ दूसरा संकट। 500 रुपए से लेकर 5000 तक के ओमेगा 3 मार्केट मिलते हैं, आपको कौन सा लेना है? ये दुविधा सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। For this video, we've spoken with Dr. Anup Mishra. He's India's best-known endocrinologist at Fortis Hospital. And also, we've spoken with Dr. Vivek Kumar, Director of Interventional Cardiology and Head of Structural Heart Program at Max Super Speciality Hospital in Vaishali. Number one thing to check, EPA or DHA ka mark zarur check kariye, not just fish oil. Also, remember, ye number jo aage likha hota hai na, 1000 mg, 1200 mg, that is the total fish oil content or algae oil inside the capsule. This does not represent the amount of omega-3 in each capsule. So what matters is how much EPA and DHA is inside this capsule. It should be at least 500 mg per serving. ये check कैसे करेंगे? इसको check करने के लिए सबसे पहले अपने bottle के पीछे देखिए, इसमें आपको लिखा होगा, like we said, at least 500 होना चाहिए, पर आपकी requirement किसी और के रिक्वायरमेंट से डिफरेंट हो सकती है। अपने डॉक्टर से पूछे कि आपके टेस्ट के हिसाब से आपको कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए। द सेकंड थिंग टू रिमेंबर इज दैट ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स कम इन टू मेन फॉर्म्स, ट्राइग्लिसराइड एंड ऑल्सो इथाइल एस्टर। ट्राइग्लिसराइड जो होता है इट्स अ नेचुरल फॉर्म, योर बॉडी अब्सॉर्ब्स इट सिग्निफिकेंटली बेटर, बट इथाइल एस्टर बुरा नहीं है, इट्स गुड टू, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म। बट इससे पहले आपको लगे ट्राइग्लिसराइड तो बहुत बुरी चीज होती है आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ट्राइग्लिसराइड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट इन द बॉडी, बट इन एक्सेस अमाउंट्स दे मे बी हार्मफुल। जो ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, दे आर सिंपली द नेचुरल डिलीवरी फॉर्म ऑफ हेल्दी फैट्स। अब आते हैं वेजिटेरियंस के ऊपर जो फिश ऑयल नहीं लेते हैं। नाउ दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन, हमने आपको पहले बताया था एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 भी होता है, इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ प्लांट बेस्ड सस्टेनेबल ऑप्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन यू आर बाइंग ओमेगा 3 मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स इज दिस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्टिफिकेट चेक करना। IFOS होता है, USP होता है और NSF होता है। बट बैड न्यूज इज दैट मोस्ट इंडियन ब्रांड्स वोंट हैव दीज। तो इंडिया में आपको कौन सी चीजें देखनी है? आपको चेक करना है GMP, FSSAI, ISO 22000 एंड HACCP। अब ये देखिए ग्लोबल स्टैंडर्ड जितने तो नहीं है, लेकिन ये आपको बता देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेफ है कि नहीं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ओमेगा 3 आप जब भी ले रहे हैं हमेशा हैव इट विद योर फूड जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग द मील, बिकॉज दैट हेल्प्स इन बेटर डिजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3। अगर आपको कोई ऐसा ब्रांड मिले विच चेक्स आउट ऑन ऑल दीज काउंट्स, तो हमें भी उसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताइए।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: economic catastrophe.
1: Yes, unko strategy nahi kehte, unko gaddari kehte hai, beimani kehte hai, tarastan aur kapat kehte. To is baar ki beimani bahut mehengi padegi itna Shinde ko bhi. और ये जो पांच छह जो गद्दार लोग हैं उनको भी अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी।
2: पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, चार पांच एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा।
3: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सुपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पांच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
4: भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।

0: उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। तो इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो पांच छह जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बनाई बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, चार पांच एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा।
2: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
3: राज भाजी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
2: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पाँच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
3: राज भाजी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कर सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।

0: यश उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते। तो इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी इतना शिंदे को भी, और ये जो पांच छह जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, चार पांच एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा।
2: मैं उस सांसद से आप पूछ रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके सपुत्र को ऐतिहासिक कोटों से हराया था, और उस चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस नाम की बीमारी है, जितना बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज जो दो चार पांच दिन से वो लिख रहे हैं, मुझे बताया गया कि उनका पासवर्ड आईडी भाजपा के पास है, तो इस बात को साबित करता है कि वो जो बकबकाइटिस बीमारी है बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लाइलाज बन चुकी है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों से निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से लेना बंद करें, ये प्रदूषण भी फैलाता है।
3: राज भारजी ऐसी बकवास करते रहते हैं, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कल सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
4: प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है, डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है, और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है, एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है।

और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया है।

साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम्स। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर हैं, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर हैं, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता, वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत
और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा। आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांवों में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है, किसकी वजह से सब संभव हुआ है? ये मोदी के कारण नहीं,
वो ताकत है भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी, इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है, जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। और साथियों, यही एस्पिरेशंस आज भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको भारत की स्पेस जर्नी का उदाहरण दूंगा। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल मानकर रुका नहीं है। बहुत हो गया मोदी जी, अब चलेगा नहीं। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की यही एस्पिरेशन दिखाई देती है। सोलर पावर में भारत की उपलब्धियों की दुनिया भर में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश हो रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है। साथियों, आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, नीस में भारत इनोवेट्स का एक आयोजन किया।
ये इवेंट भारत के डीप टेक सामर्थ्य को दुनिया तक पहुंचाने का एक और माध्यम था। इसमें भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स उपस्थित थे। भारत इनोवेट्स में करीब 1400 B2B मीटिंग हुई है। कई स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आगे बढ़ी, कॉमर्शियल ऑर्डर्स के लिए रास्ते खुले, फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज तथा इंक्यूबेटर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते बने हैं। इसलिए भारत इनोवेट्स सिर्फ एक समिट नहीं रहा, यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बना है। और आज ही पेरिस में वीवा टैग इवेंट के जरिए इस यात्रा को हमने और आगे बढ़ाया। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। एवियां में G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी, ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। साथियों, भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा नजर आ रही है। फ्रांस के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, दुनिया के हर देश, हर रीजन के साथ भारत समझौते कर रहा है।
अगले महीने से भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू हो जाएगा। यह एग्रीमेंट भारत के फार्मर्स, वर्कर्स और इनोवेटर्स को अनेक नए अवसर प्रदान करेगा। साथियों, आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, सोलर एनर्जी हो या एआई के क्षेत्र में सहयोग हो, भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। पिछले वर्ष पेरिस में और इस वर्ष दिल्ली में हमने एआई समिट को कोचेयर किया। अब हम साथ मिलकर अगले वर्ष तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तृष्णा सैटेलाइट जो विश्व में फूड और वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में योगदान देगा। और साथियों, यह सभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहलों में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हैं जो भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। आप दोनों समाजों को समझते हैं, दोनों बाजारों को समझते हैं। आने वाले समय में टैलेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों को आगे बढ़ाने में आप सबकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है। साथियों, भारत और फ्रांस के रिश्तों को साझा इतिहास, साझा मूल्यों और साझा विश्वास ने आगे बढ़ाया है। विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस की धरती पर बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृतियां आज भी हमें जोड़ती हैं। मुझे पहले नव शापेल में श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। पिछले वर्ष प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मार्सेय के वॉर मेमोरियल जाने का अवसर भी मिला। ये हमारी साझी विरासत है। फ्रांस भारतीयों के योगदान को संजोता भी है और सराहता भी है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान हो, जिन्होंने फ्रांस की रेजिस्टेंस के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, या महाराजा रणजीत सिंह के साथ काम करने वाले जनरल जा फ्रांसवा अलार हो, ये सभी भारत और फ्रांस की साझा विरासत के प्रतीक हैं। भारत के राज्य पुडुचेरी में भी
फ्रेंच विरासत की झलक दिखाई देती है। वहां का आर्किटेक्चर, वहां की कला संस्कृति और खान पान सभी में हमारे संबंधों की महक है। साथियों, इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही है। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लो शोपा जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है, योगा डज नॉट एड इयर्स टू लाइफ, इट एड्स लाइफ टू इयर्स। साथियों, मैं फ्रेड नेगरी जी को भी आज आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है और वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे चप्पे पर दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़ करके बोलता है। खास तौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक है। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से शुरू की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए हैं। पिछले वर्ष मार्से में कॉन्सुलेट खोला गया, इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है, यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, इस साझेदारी की नींव, इस रिश्ते की असली ताकत आप सब है। आप सब मेरे देशवासी हैं। आज जब भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने का आग्रह करूंगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई शक्ति मिलेगी और आपको अपने पुरखों की धरती की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रेम, आपके उत्साह और इस आत्मीय स्वागत के लिए
मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। तो इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी इतना शिंदे को भी, और ये जो पांच छह जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, चार पांच एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा।
2: प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है। डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है। और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है, एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: You are watching India Today.
3: A draw for Portugal in a match that they should have won has become one of the biggest talking points in this FIFA World Cup. A team that had plenty of quality and their tallest figure is Cristiano Ronaldo failed to register what should have been an easy win. The spotlight was on the Portuguese superstar who looked lackluster and is facing scrutiny world over.
4: Those two not exactly seeing eye to eye either. And that is it. A frustrating start for Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo and for Portugal.
3: A Portuguese side that is expected to make waves in the 2026 FIFA World Cup was held to a frustrating 1-1 draw by the Democratic Republic of Congo. Cristiano Ronaldo, a certified great of the modern game, had a game to forget. He matched Leo Messi for featuring in 6 World Cup editions, but while Messi announced himself in the 2026 edition of the FIFA World Cup with a hat-trick, Ronaldo will have to wait to become the first player to score in 6 different World Cups. The 5-time Ballon d'Or winner is facing scrutiny for not helping his team's cause.
5: One thing that's important, people, please, at home. The team needs to score, not you need to score. If he goes into the six-yard box, you've been in that situation, Alexi, you would have had to follow him, and then it would have been a tap-in for Bruno Fernandes. But because he wants to score, he goes into the path of the back pass, you see both players, and it's easier for you to defend. And that's my thing. The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space, so I can tap it in. It didn't happen.
3: The goalless draw against Congo only deepens Ronaldo's frustration. For the 5th straight World Cup match and the 10th consecutive game across major competitions, Cristiano has failed to find the net. But can't get it on. Surely, this was not the ideal start for him, but if Ronaldo and Portugal needed a wake-up call, they have it already. Sports Bureau, India Today. Manpreet Singh has become India's most capped hockey player ever. He gets his 413th international cap, surpassing the legendary Dilip Tirki. My colleague Rahul Rawat caught up with the former India hockey captain, who now reflects on his journey and also tells us who's that sports person that he really looks up to.
6: Manpreet, पीछे मुड़ के देखते हो आज 2011-12 अगर हम पीछे चले जाएं 12-14 साल पीछे लगता है कि यार थोड़ा सा ये देखा था सोचा था कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझसे ये पूछ रहे होंगे मैं एक ओलंपिक दो ओलंपिक मेडल जीत चुका हूँ जिसमें से एक मेरी कप्तानी में आएगा और आज दिलीप तिर्की जो खुद एक बड़े प्लेयर रहे हैं और आज हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं आज ये सोचा था कभी कि ऐसा भी दिन देखेंगे हम
7: नहीं पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस वक्त तो पता भी नहीं था कि हाँ कि इतना लंबा खेल पाएंगे ठीक है और एज ए यंगस्टर मैं टीम में आया था ठीक है 2011 में हम लोग मैं टीम में सिलेक्टेड हुआ था तो उस वक्त हम लोग फर्स्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेले थे वो हम लोग जीते थे फिर उसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट था मेरा ओलंपिक्स था बट उसमें जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं हुई थी कि हम लोगों ने 12वें पे खत्म किया था ठीक है तो कोई भी मैच नहीं वहां पे जीत पाए बट उसके बाद जो जर्नी है काफी अपसाइड डाउन रहे उसमें 2014 में हम लोगों ने एशियन गोल्ड गेम्स में गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीता फिर काफी टाइम के बाद जाके 2020 में फिर टोक्यो में हमारा जाके ब्रॉन्ज मेडल आया था
6: पहली कमाई याद है जो सिलेक्शन होने के बाद जब आप खेले हो मैच फीस मिली हो याद है कितनी थी और क्या किया था
7: एक्चुअली घर पे दिया था क्योंकि डेफिनेटली कि हमारे हाँ सभी जैसे कि गांव में ऐसे ही होता है कि हाँ कि जो पहला कुछ भी आपको मिलता है वो आप अपने पेरेंट्स को देते हो कि हाँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होता है। तो मैंने भी
6: कितना मिला था याद है?
7: उस वक्त पहली बार हमें दिया था इन्होंने आई थिंक 25,000 दिया था, ठीक है। फिर बाद में HAL आ गई थी, ठीक है। फिर उसमें जो लीग का प्लेयर एज ए प्लेयर जो जितने में मैं बिका था उसका जो पैसा मिला था, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ कि इतने लाखों में मैं बिकूंगा, क्योंकि जब ऑक्शन होने वाली थी उस वक्त मेरे घर वालों ने सिर्फ सोचा था कि ये तो HAL हो रही है तो यंग प्लेयर है, ये तो कम से कम 3-4 लाख में या 5 लाख में बिकेगा। बट उस वक्त मैं जाके 2013 के बाद उस वक्त जाके मैं 36 लाख का बिका था, 36-34 का बिका था, ठीक है। तो घर वाले मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कि हाँ कि मतलब सडनली लाइक इतना महंगा ये बिका है। खुशी बहुत है, समझ में नहीं आ रहा था, बस खुशी से रो रहे थे सारा परिवार हमारा।
6: मनप्रीत, आपने हिंदुस्तान को, इंडियन हॉकी को, एक जो हम कह रहे, मैं बोल भी रहा था कि रिवाइव करने में ना आपने शुरुआत से दिखा है। और जो लॉन्जिविटी की बात हम कर रहे थे, 4 ओलंपिक्स हो गए आपके, 12, 16, फिर 20 वाला जो 21 में खेला गया, जहां आपकी कप्तानी में इंडिया ने वो इतना लंबा, वो एक मेडल का, ओलंपिक मेडल का जो सूखा था उसको खत्म किया, फिर आप लोगों ने पेरिस में उसको रिपीट किया, एक और ओलंपिक्स अभी भी है, 33 साल आपकी उम्र है, फिटनेस आपके जो है हॉकी में वैसे ही फिटनेस स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है, एक और ओलंपिक्स की चाह है अभी मन में?
7: बिल्कुल है, क्योंकि मेरा यही है कि हाँ कि अगर मैं फिट रहूं जैसे मैं अभी फिट हूं, इसी को अगर कंटिन्यू कर पाया तो डेफिनेटली कि मैं एलए ओलंपिक का एम लेके जा रहा हूं। बट ये साल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग के पास अभी वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स है,
6: एशियन
7: जहां से हम
6: गेम्स,
7: लोग डायरेक्टली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये टूर्नामेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद फिर हम लोग ओलंपिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। बट हाँ, अगर मैं फिट रहूंगा, अगर मैं फिट हूँ कि हाँ कि उस लेवल पे खेल पा रहा हूँ, तो तभी मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा और एलए तक जरूर जाऊंगा।
6: कोई रोल मॉडल है हॉकी के अलावा बाहर किसी खेल में या किसी भी
7: बिल्कुल,
6: फील्ड में?
7: मेरा फुटबॉल में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मैं उसको बहुत क्लोजली देखता हूँ, और विराट है, ठीक है, क्योंकि विराट की फिटनेस, और विराट भी रोनाल्डो का फैन है, तो वो भी उसकी जो फिटनेस है, माइंडसेट है, उसको एडमायर करता है वो भी।
2: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.

0: The film also features Anil Kapoor in a pivotal role, further strengthening an ensemble that brings together some of the industry's most popular names.
1: अंकुर, तूने कुछ किया? तू कुछ टच किया? कुछ खाया? ओके. तेरे फोन से कोई कॉल्स? कभी ने कोई कॉल्स किए तेरे फोन से? नहीं. ब्लड सैंपल लिया तो क्लीन आएगा ना? तू डर मत, कुछ नहीं होगा.
2: संगवे वैसे ही.
0: On the work front, Alia Bhatt was last seen in Jigra and will next be seen in Sanjay Leela Bhansali's Love and War alongside Ranbir Kapoor and Vicky Kaushal.
3: किसे डर लगता है?
4: अपने आप से.
3: क्यों?
4: कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान.
0: बॉबी देओल, ऑन द अदर हैंड, इज करंटली अर्निंग प्रेज फॉर हिज परफॉर्मेंस एज समर मेहरा इन अनुराग कश्यप्स बंदर.
3: मैं नहीं भूलूंगी. सुंदर होता हूँ.
4: हाँ, स्कूल में सब कहते थे मैं हीरो बनूंगा.
3: मैं बनाऊंगी तुम्हें हीरो. हर अखबार के फर्स्ट पेज पे तुम्हारी फोटो होगी.
4: कैसे?
0: With a compelling origin story, a mentor-turned-enemy conflict, and a strong female-led narrative at its center, Alpha continues to stand out as one of the most intriguing chapters in the ever-expanding BRF spy universe.

0: are watching India Today.
1: A draw for Portugal in a match that they should have won has become one of the biggest talking points in this FIFA World Cup. A team that had plenty of quality and their tallest figure is Cristiano Ronaldo failed to register what should have been an easy win. The spotlight was on the Portuguese superstar who looked lackluster and is facing scrutiny world over.
2: Those two not exactly seeing eye to eye either. And that is it. A frustrating start for Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo and for Portugal.
1: A Portuguese side that is expected to make waves in the 2026 FIFA World Cup was held to a frustrating 1-1 draw by the Democratic Republic of Congo. Cristiano Ronaldo, a certified great of the modern game, had a game to forget. He matched Leo Messi for featuring in 6 World Cup editions, but while Messi announced himself in the 2026 edition of the FIFA World Cup with a hat-trick, Ronaldo will have to wait to become the first player to score in 6 different World Cups. The 5-time Ballon d'Or winner is facing scrutiny for not helping his team's cause.
3: One thing that's important, people, please, at home, the team needs to score, not you need to score. If he goes into the six-yard box, you've been in that situation, actually, you would have had to follow him, and then it would have been a tap-in for Bruno Fernandes. But because he wants to score, he goes into the path of the back pass, you see both players, and it's easier for you to defend. And that's my thing. The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind, going like, let it roll, make a run, create space, so I can tap it in. It didn't happen.
1: The goalless draw against Congo only deepens Ronaldo's frustration. For the 5th straight World Cup match and the 10th consecutive game across major competitions, Cristiano has failed to find the net. But can't get it on. Surely, this was not the ideal start for him, but if Ronaldo and Portugal needed a wake-up call, they have it already. Sports Bureau, India Today. Manpreet Singh has become India's most capped hockey player ever. He gets his 413th international cap, surpassing the legendary Dilip Tirki. My colleague Rahul Rawat caught up with the former India hockey captain, who now reflects on his journey and also tells us who's that sports person that he really looks up to.
4: Manpreet, पीछे मुड़ के देखते हो आज 2011-12 अगर हम पीछे चले जाएं 12-14 साल पीछे लगता है कि यार थोड़ा सा ये देखा था सोचा था कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझसे ये पूछ रहे होंगे मैं एक ओलंपिक 2 ओलंपिक मेडल जीत चुका हूँगा जिसमें से एक मेरी कप्तानी में आएगा और आज दिलीप तिर्की जो खुद एक बड़े प्लेयर रहे हैं और आज हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं आज ये सोचा था कभी कि ऐसा भी दिन देखेंगे हम
5: नहीं भैया एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस वक्त तो पता भी नहीं था कि हाँ कितना लंबा खेल पाएंगे ठीक है और एज ए यंगस्टर मैं टीम में आया था ठीक है 2011 में मैं टीम में सिलेक्टेड हुआ था तो उस वक्त हम लोग फर्स्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेले थे वो हम लोग जीते थे फिर उसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट था मेरा ओलंपिक्स था बट उसमें जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं हुई थी कि हम लोगों ने 12वें पे खत्म किया था ठीक है तो कोई भी मैच नहीं वहां पे जीत पाए बट उसके बाद जो जर्नी है काफी अपसाइड डाउन रहे उसमें 2014 में हम लोगों ने एशियन गोल्ड गेम्स में गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीता फिर काफी टाइम के बाद जाके 2020 में फिर टोक्यो में हमारा जाके ब्रॉन्ज मेडल आया था
4: पहली कमाई याद है जो सिलेक्शन होने के बाद जब आप खेले हो मैच फीस मिली हो याद है कितनी थी और क्या किया था
5: एक्चुअली घर पे दिया था क्योंकि डेफिनेटली कि हमारे हाँ सभी जैसे कि गांव में ऐसे ही होता है कि हाँ कि जो पहला कुछ भी आपको मिलता है वो आप अपने पेरेंट्स को देते हो कि हाँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होता है तो मैंने
4: कितना मिला था याद है
5: उस वक्त तो पहली बार हमें दिया था इन्होंने आई थिंक 25,000 दिया था ठीक है फिर बाद में HAL आ गई थी ठीक है फिर उसमें जो लीग का प्लेयर एज ए प्लेयर जो जितने में मैं बिका था उसका जो पैसा मिला था हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ कि इतने लाखों में मैं बिकूंगा क्योंकि जब ऑक्शन होने वाली थी उस वक्त मेरे घर वालों ने सिर्फ सोचा था कि ये तो HAL हो रही है तो यंग प्लेयर है, ये तो कम से कम 3-4 लाख में या 5 लाख में बिकेगा। बट उस वक्त मैं जाके 2013 के बाद उस वक्त जाके मैं 36 लाख का बिका था, 36-34 का बिका था, ठीक है। तो घर वाले मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कि हाँ कि मतलब सडनली लाइक इतना महंगा ये बिका है। खुशी बहुत है, समझ में नहीं आ रहा था, बस खुशी से रो रहे थे सारा परिवार हमारा।
4: मनप्रीत, आपने हिंदुस्तान को, इंडियन हॉकी को, एक जो हम कह रहे, मैं बोल भी रहा था कि रिवाइव करने में ना आपने शुरुआत से देखा है। और जो लॉन्जिविटी की बात हम कर रहे थे, 4 ओलंपिक्स हो गए आपके, 12, 16, फिर 20 वाला जो 21 में खेला गया, जहां आपकी कप्तानी में इंडिया ने वो इतना लंबा, वो एक मेडल का, ओलंपिक मेडल का जो सूखा था उसको खत्म किया, फिर आप लोगों ने पेरिस में उसको रिपीट किया, एक और ओलंपिक्स अभी भी है, 33 साल आपकी उम्र है, फिटनेस आपके जो है हॉकी में वैसे ही फिटनेस स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है, एक और ओलंपिक्स की चाह है अभी मन में?
5: बिल्कुल है, क्योंकि मेरा यही है कि हाँ कि अगर मैं फिट रहूं जैसे मैं अभी फिट हूं, इसी को अगर कंटिन्यू कर पाया तो डेफिनेटली कि मैं एले ओलंपिक का एम लेके जा रहा हूं। बट ये साल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग के पास अभी वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स है,
4: एशियन
5: जहां से हम
4: गेम्स,
5: लोग डायरेक्टली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये टूर्नामेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद फिर हम लोग ओलंपिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। बट हाँ, अगर मैं फिट रहूंगा, अगर मैं फिट हूं कि हाँ कि उस लेवल पे खेल पा रहा हूं, तो तभी मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा और एलए तक जरूर जाऊंगा।
4: कोई रोल मॉडल है हॉकी के अलावा बाहर किसी खेल में या किसी भी
5: बिल्कुल,
4: चीज में?
5: मेरा फुटबॉल में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मैं उसको बहुत क्लोजली देखता हूँ। और विराट है, ठीक है, क्योंकि विराट की फिटनेस, और विराट भी रोनाल्डो का फैन है, तो वो भी उसकी जो फिटनेस है, माइंडसेट है, उसको एडमायर करता है वो भी।
0: Watching India Today.
6: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.

0: The film also features Anil Kapoor in a pivotal role, further strengthening an ensemble that brings together some of the industry's most popular names.
1: अंकुर, तूने कुछ किया? तू कुछ टच किया? कुछ खाया? ओके. तेरे फोन से कोई कॉल्स? कभी ने कोई कॉल्स किए तेरे फोन से? नहीं. ब्लड सैंपल लिया तो क्लीन आएगा ना? तू डर मत, कुछ नहीं होगा.
2: संगवे वैसे ही.
0: On the work front, Alia Bhatt was last seen in Jigra and will next be seen in Sanjay Leela Bhansali's Love and War alongside Ranbir Kapoor and Vicky Kaushal.
3: किसे डर लगता है?
4: अपने आप से.
3: क्यों?
4: कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान.
0: बॉबी देओल, ऑन द अदर हैंड, इज करंटली अर्निंग प्रेज फॉर हिज परफॉर्मेंस एज समर मेहरा इन अनुराग कश्यप्स बंदर.
3: मैं नहीं भूलूंगी. सुंदर होता
4: हूँ. हाँ, स्कूल में सब कहते थे मैं हीरो बनूंगा.
3: मैं बनाऊंगी तुम्हें ही. हर अखबार के फर्स्ट पेज पे तुम्हारी फोटो होगी.
4: कैसे?
0: With a compelling origin story, a mentor-turned-enemy conflict, and a strong female-led narrative at its center, Alpha continues to stand out as one of the most intriguing chapters in the ever-expanding BRF spy universe.